जो हमारी वेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरु जी दे पावन पवित्र इलाकी बचना दा कीर्तन आप जी नू साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झाड़ू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नू जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा है ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके हुए किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नू उस दे अंदर नू चंजून के चला जांदा है। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावे हिंदुस्तान दी धरती भावे बाहर आप बैठे हो इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निक मानने हां अपने बच्चियां नू अपने माता पिता नल अपने परिवार विच सुख आनंद नल दिन कढ़ने हां पर जदों किते तवारीख दे हिस्ट्री दे इतिहास दे पन्नियां नू पलट के देखो ते अज तो 300 साल पिछां चले जाओ ते हैरानगी हुंदी है सन 1704 दसंबर दा

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे कम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरां जी दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन आप जी नू साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के चारू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नू जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा है ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नू उस दे

दिन किते तू बड़े श्रद्धा भावना नाल ते देख गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दसवां गुरुदेव उन्हें इस महीने किन्नी कु वड्डी कुर्बानी सिख लई कर दिती। अपने पुत्र, अपने सत्कार योग माता, अपने बेगमपुरे वर्गे शहर आनंदपुर साहब की धरती नूं त्याग के सब कुछ लेखे ला के उस अकाल दे शुकर विच जुड़ के तेरे लिए गुरु जिहड़ा परमेश्वर दे दर तो दुआवां मंगदा है ते चित कीता सी जिथे इस महीने विच साके आउणे ने उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दे इतिहास विच जिहड़ी पहली लड़ाई होई है इहनूं केवल इह ना समझियो कि शायद कोई प्रसाद दी गल नहीं, जिहड़ी पहली जंग मेरे गुरुदेव ने पौंटा साहिब दी धरती ते लड़ी है। चित कीता अपने बजुर्ग अपने सतगुरु दे इतिहास तो भी जाणू होईए उस जंग लड़न दे कारण की सन ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस जंग विच सानू की सिख्या दित्ती जिहड़े कुरबानी देण वाले ने। इस संबंधी अर्ज करनी आप कृपा करके एकाग्रता बख्शिया जे साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा दी टेक लईए। हजूर आप कृपा करके विच वरतो साडे अंदर नूं टिका एकाग्रता अपने चरणा दी भावना श्रद्धा बख्श दिओ। करो कृपा साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सत्कार योग भाई साहब जी होरी जो हजूर दी पवित्र बाणी विचों असानू शब्द सरवण करा रहे सन, बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैल परी जय जियो। एक खिन इस संबंधी अर्ज करके अगे तुरने हजूर कहिंदे ने मनुख दे अंदर दी मलीनता जिहड़ी है उह सत संगत तो बिना उतर नहीं सकदी ते दूसरा वचन कीता सत संगत भागा तो बिना कदी नसीब नहीं हो सकदी। गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी ने कर्म फिलोसफी नूं इन्हां भागां दा जिहड़ा सब्जेक्ट है इहनूं प्रवान कीता है। पूर्वले कीते कोई कर्मां दा जिक्र हजूर करदे ने ते जिहड़े आपां कर्म हुण करने आ उन्हां दा जिक्र भी हजूर ने बाणी विच कीता है। साहिब कहिंदे भागां तो बिना कदी सत संगत नहीं लभदी। हजूर दा इक वचन होर भी आउंदा है आपां पढ़ने आ वड भागी हर संगत पावै, उत्थे भी गल भाग दी कीती पर नाल कहिंदे भागहीन भ्रम चोटा खावे, फिर कहिंदे बिन भागां सत संग ना लभे। हजूर दी बाणी विच इक होर प्रमाण आउंदा वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। वड्डियां भागां वालियां नूं सत संगत मिली। हजूर दी बाणी विच इक होर वचन आउंदा कि संत सभा ओट गुर पूरे भागां तो बिना नहीं तुर मस्तक लेख लिखाए। साहिब दी बाणी विच इक होर वचन आउंदा है कि भागां तो बिना संगत नहीं। साहिब कहिंदे ने पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। कहिंदे ने जदों पूर्वले कीते हुए बीजे हुए कर्मां दा बीज पुंगरिया ते फिर की मिलिया कोई नाम रसक बैरागी पुरश जिदा किरदा नाम विच बह तुरिया है। साहिब कहिंदे ने पूर्वली कमाई नाल किते उस गुरमुख दी संगत नसीब हो गई। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी ते ओनू मिल के की होया। साहिब कहन लगे ओनू मिलन दे नाल अंदर दा अंधकार बिंस गया। मिलियो अंधेर मिटत तै नानक जन्म जन्म की सोई जागी। कई जन्मां दी अंदर सुरत जिहड़ी सुती सी ओह जाग पई ते चित विच आया साहिब कहिंदे सत संगत करो ते आप जी आउंदे हो कई रोजाना संगत विच आउंदे ने। देखो हर एक दा कारज भी आपो आपने, कोई सख्त शब्द संगत लई नहीं। कई हफ्ते बाद आउंदे ने पर एक गल दी निराशता ना पल्ले लै के जायो कि आपां की हफ्ते बाद जे एक घंटा कीर्तन सुनने आ बाणी सुनने आ कि एक घंटे नूं साडा पार उतारा हो सकदा ते इहदा अर्थ इह वी ना समझिए कि आपां आलस करना शुरू कर दईए। मेरे साहिब ने एक बाणी विच प्रमाण दित्ता है किन्ने ने घंटा की इथों तक किन्ने ने सिखा जे तेरा जीवन घड़िया जाए ना ते संगत विच इन्नी कु बरकत ही जे अति

अथाह अगंत अतुल ज्यो बुलाव हो त्यो नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जमी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी बखियान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी बखियान। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दे पवित्र चरण स्पर्श करन वास्ते साहिबां दी प्यारी गोद विच इकत्र होए बैठे हो। जिवें आप जी नूं इह सब नूं जानकारी है कि 27 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी सी, जिस नूं आपां अज सतगुरु दे घर अंदर मना रहे हां। आपने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन भी सरवण कीता है और गुरमुख प्यारियां तों उस दृश्य नूं तवारीख दे उस पन्ने नूं सरवण कीता जदों महाराणी जिंद कौर अपने सपुत्र दे शीश ते केस ना देख के उसने सब कुछ सह लिया अपने उते, पर इहनू ना सह सकी कि कलगी वाले दी मोर मेरे पुत्र दे सिर तों गुम हो जाए। आओ

आप कृपा करके विच वरते मेरा सतगुरु कृपा करके एकाग्रता बख्शिया जी जिन्हें भी आप बैठे हैं, क्योंकि एकाग्रता तो बिना आनंद नहीं। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र इलाही गुरबाणी दा जदो आपां पाठ करने ते गुरमत दे सिद्धांत दी आपां जदो विचार करने आ ते सतगुरु ने बाणी अंदर दो पक्ष मनुख दे बयान कीते। मनुख दे की इस बनाई हुई सृष्टि दे हर वस्तु दे दो पक्ष दिते ने। जिथे मेरे सतगुरु ने बाणी विच अमृत दा वेरवा दिता है, अमृत दी समर्था की है, अमृत अंदरों पी के मनुख केड़ियां उस रूहानियत दियां पिंगां नूं झूटदा है, उथे साहिब ने इस दे विपरीत जिहड़े विषय विकार ने इन्हां विच मनुख जदों डुब जांदा है ते उदों इहदा जीवन तबाह किवें हो जांदा है। अमृत दी चढ़दी कला ते विकारां विच गर्क हुंदे जीवन दोनां नूं बयान कीता है। सतगुरु ने एक पासे उस मनुख दी देही नूं इन्ना कु सलाया जिहड़ा नाम भी जुड़िया उहनूं कह दिता ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान उस मनुख विच ते प्रभु विच कोई अंतर नहीं जिहड़े नाम विच भिजे ने। ते दूजे पासे इस देही दी गल करदिआं कह दिता, कहन लगे एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। सोचदे होगे भी आपां बरसी तां मना रहे हां पर गल बाणी दी जुद्दे पासे नहीं, मैं गल राज दी करनी। साहिब ने जिथे अमृत दी गल कीती उथे वकार जिहड़े जीवन नूं तबाह करदे ने उहनां दा जिक्र कीता। जिथे साहिब ने भिजी होई अंदर दी उह आत्मा जिहड़ी एकमिक हो चुकी है उहदी वडियाई कीती, उथे मेरे गुरदेव ने रब तो टुटिया होया दे जीवन नूं भी बयान कीता। जिथे सतगुरु ने बाणी विच ए कह दिता, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे होवे तां सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। उथे नाल ही कह दिता, जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। दोनों पक दे दिते। जिथे साहिब ने कहा, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। उथे नाल ए भी कह दिता, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। सनमुख दी गल कीती नाल बेमुख दे जीवन नूं भी दस दिता, सच्ची बाणी दी गल कीती नाल कच्ची बाणी दा वेरवा दे दिता, अमृत दी गल कीती नाल जहर दी गल कर दिती, रब नाल भिजे हुए संत दी गल कीती ते नाम तो टुटे हुए साकत दे जीवन नूं बयान कीता। ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी गल पढ़ी उहदे विचों राज दा संकल्प तकिया ते साहिब ने उस राज नूं प्रवान ना कीता जिस राज विच रब गुरु परमेश्वर भुल जाए ते मनुख जुल्म कर लग पै। ते जदों दूजा पख लिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने राज नूं प्रवान भी कीता। साहिब दी बाणी विचों कुछ प्रमाण ने, सतगुरु केड़े राज नूं प्रवान नहीं करदे। हजूर दा बचन, ऐसो राज ना कीता काज जित नै तृप्ताए। केड़े राज नूं गुरु प्रवान नहीं करदा, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन काओ रत पित कुत्तेओ चट जाओ। इस राज नूं प्रवान नहीं कीता। केड़े राज नूं गुरुदेव ने प्रवान नहीं कीता, बाणी दे अंदर जिस कै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत सवान। साहिब ने एहो जै राज नूं प्रवान नहीं कीता। पर एक गल चेते रखियो, जे आपां कहीए वी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी राज दी गल नहीं करदी, गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला शब्द ही श्री राग दा एवे कहिंदे ने, सुल्तान होवां मैं लश्कर। राज नूं प्रवान कीता, कहिंदे ने हे मालक जे तू मैनूं बादशाह दे देने, सुल्तान होवां मैं लश्कर तख्त राखां पाऊं हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ पर इन्ना राज लैके एक मेरे ते कृपा कर दे, सुल्तान बना दे, फौज दे दे, राज भाग दे।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: दयाल श्री हर गोविंद चंद को बोलन हर बिलहारे सुन चंदू चिंतायत अनक उपाव विचार चौवे
1: वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, हफ्तावारी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी कोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहज धन गुरु रामदास कृपालु जी का उच्चारण किया हुआ यह शब्द, जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नु जिथे बयान किया है, उस एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा का लिया है। दुख होवे, सुख होवे, खुशी होवे, गमी होवे, मैं अपने साई तो बिना कभी किसी अगे पुकार नहीं की। शब्द आपां सरवण कीता है, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक कृपालता होर गुरु रामदास जी ने की, कहिंदे ने कई बारी असी परमेश्वर दे गुणा जी जदों गल करने हैं ते कोई घटना हैरानी पैदा करने वाली वापर जाए ते असी सोचने हैं कि ये हो सकता है। मेरे धन गुरु रामदास जी ने नाल एक प्रमाण उदाहरण वजो दिता, कहिंदे ने परमेश्वर की इन्नी वडियाई है जिस बंदे नू कोई नहीं जानदा, जे परमात्मा मेल करे ते उन्हूं सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज ये किवें हो सकदा है? साहब कहिंदे ने हो सकदा है, जो असंभव है वह संभव हो सकदा है। ते नाल उदाहरण की दिती, कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने। अज तिकड़ा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन? साहब कहिंदे ने विचे धरती विचे पानी विच कास्ट अगन तरी जाए, देख तीन हिस्सा पानी है एक हिस्सा धरती है, ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी खोण दे बावजूद टिकाया है। ए ता मानू जिवे उन्हें बकरी ते शेर दोनों इकट्ठे बने हुए, चार चुफेरे पानी है। आपां जदों ग्लोब नू तकने हैं चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आउंदा है, धरती का किन्ना कु हिस्सा है? साहब कहिंदे विचे धरती विचे पानी विच कास्ट अगन तरी जाए, बकरी सिंह एक तय थाए रख है, मन हर जप भरम पाओ दूर कीजिए। जे पानी विच धरती नू टिकाई बैठा है ते मना कल्पी ना जा, रब नू सिमरिया करो तेरे भी डर जरूर दूर करेगा। दूजा शब्द गुरमुखा ने सरवण कराया कि शाम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लह। शब्द विच परमाणु ना बड़े बैराग दे भिजे दिते। मैं इस करके अर्ज कर रहा क्योंकि आपां इह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों सरवण कीते ने, ते इस मैं बेनती कर दिया गुरु के सिखो, राग तां इक भांडा है। मैं कहना ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੋਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ।

0: गोबिंद सिंह साहब ने
1: पंच सिंह ताबिया
0: खड़े किया उस वक्त
1: नाम सुनो शुभ दे
0: नाम सुनो सुंदर निवास वाले
1: मनी सिंह ताबिया सजे
0: महाराज जी ताबिया जी महाराज जी खिलौना

सुनिहा दे खालसे नु मारन वाले हो तुसी ते भावे मर जाओगे पर खालसा नहीं मरेगा जिन्ना चेरे गुरु दा है। सुनेहा त्या देना सी साडा ते मकसद ही नहीं पैसे लेना। फिर उन्हें एक चिट्ठी लिखी और याद रखो जे चिट्ठी दे बोल पंथ प्रकाश दे ने यह चिट्ठी दे बोल सुखा बोता सिंह ने अपने लिखे हुए नहीं एक से शायर दे मगरों लिखे हुए ने कई गल्लां जिहियां ने जिहड़ियां बहुत विचारन योग ने। उन्हें एक चिट्ठी लिखी जकरिया खान नूं चिट्ठी लिखे सिंह बोता हाथ विच सोटा यह भी दस दिता भी साडे कोल अज कोई बहुते हथियार नहीं है। चिट्ठी लिखे सिंह बोता हाथ विच सोटा विच राह खलोता पैसा लाया आना लाया गड्डे नूं पैसा लाया खोता। कहन लगे उन्हूं जाके कहना भी जकरिया खानो इउं आखी भाबो खानो नूं चिट्ठी लिखे सिंह बोता। कहन लगे जाके उन्हूं ये गल कमी किसे एक राहगीर नूं पकड़ के उन्हूं बचन आख्या भी सजना तेरा छुटकारा तां हो सकदा तू चिट्ठी पचा के आई। एक गल मैं होर बेनती करदी हां याद रखियो जे चिट्ठी लेके जान वाला जे उहदी सिक्खी नाल नफरत हुंदी ते उह रस्ते विच ही पाड़ के सुट जांदा किसे नूं की पता लगना सी। लेकिन लोग दिलों सिखी नाल प्यार करते सन। ये अगे जाके आम शब्दाली वेले मैं तुहाडे नाल सांझ पावांगा भई लोग भावे डरदे सन पर सिखी नाल प्यार किन्ना करदे सन। गल वक्री उदों चिट्ठी लैके चले गए चिट्ठी लिजा के उन्होंने ते सरकारे दरबारे जकरिया खान दे कोल पहुंचाई। जकरिया खां आखी भाबो खानो नूं भाभी खानो नूं ते उन्हें जलो बचन पढ़े उदे अग लग गई भाई मैं सोची बैठा सिख खत्म हो गए सिख इत्थे खालसा राज पैदा करी बैठे ने सिख कह रहे ने खालसियां दा राज हो गया ते इन्ना इन्ना अच्छी टैक्स ले रहे हैं ये खालसे दा टैक्स है। अग लगी तो उन्हें उस वेले जलालुद्दीन नां दे बंदे दे अधीन करके 100 बंदे दी फौज भेजी। दो बंदियां दी खातर देखो मैं बार बार बेनती करना हुंदा वां जदों भी कदे इन्हां ने जंग लड़िया असावां जंग लड़िया सिर्फ दो बंदे ने ते बंदा 100 चढ़ के आ रहा और उन्हां कोल वक्त दे हाकम दे कोल होण करके हथियार सारा कुछ असला है पर इन्हां कोल सोटे ही ने कल्ले और उन्हें बकायदे चिट्ठी च लिखिया भी साडे कोल सोटे ही ने। फिर भी 100 बंदा चढ़ के आया ते उह आके आख ललकारदे ने जदों ललकारदे ने उस वेले बोता सिंह ते गरजा सिंह ने एक आवाज मारी कहण लगे ओ सजना एक काम करी सानू इवें ना मारी जिवें तू मारन लगे सानू इवें ना मारी तू यूं कर असी दो जने हैं असी केवल दो जने पिठां जोड़ी खड़े ने हो असी केवल दो जने हैं तू यूं कर असी दो जनिया दे मुकाबले विच तू अपने पांच पांच भेज यूं ना कर सारिया नू ना भेज पांच पांच नू भेज। जलालुद्दीन नू बड़ा हंकार सी भी दो बंदियां दी खातर मैं 10 भेजण लगा उन्हें जिहड़े 96 जवान सन 94 जवान सन हरेक तरीके नाल उन्हां ते माण सी उन्हें 94 10 जवान कढे 10 बोता सिंह दे वल 10 गरजा सिंह दे वल भेजे। उन्हां 10 जणियां दे सामने दोवें जणे गुरु के सिखां ने जिहनूं गुरु नूं याद करके एक बारी सोटा मार दिंदे ना दुबारे उठण जोगा नहीं छड्डदे। उह जदों 10 दे 10 मर गए जलालुद्दीन कहण लग्या भी इवें नहीं हो सकदा कहन लग्या मैं तुहाडी एक दे मुकाबले च 10 भेजांगा। उन्हें आख्या चलो 10 नूं भेज दे हुण तुसीं आप हिसाब ला लो भी किन्ने क सिख चढ़दी कला च होणगे। हालांकि बेचारियां नूं दरख्तां दे पत्ते खाण नूं मिलदे ने हालांकि बेचारियां नूं दरख्तां दीआं छिलड़ां खाण नूं मिलदीआं ने साडे वर्गे छत्ती पदार्थ मन भाउंदे नहीं सन मिलदे। अज ते आपां नखरे करदे आ ने वी आ नहीं खाणा उह नहीं खाणा इह उहनां नूं कुछ नहीं सी मिलदिआं बेचारियां नूं कई कई दिन कड़ा प्रसाद का मुंह देखा लंघ जाते सन तरसदा सी गुरु का सिख ताही का दसम पातशाह दे वेले एक गड्डिया का व्यापारी रस्ते विचों आउंदा आउंदा एक किणका प्रसाद का मुंह नूं ला के चला गया सी प्रसाद नूं भी तरसदे सन गुरु के सिख नहीं मिलदा सी अज वांगू। ते उस वेले जदों उन्हें 10-10 भेजे ते गुरु के सिखां ने 10-10 नूं रड़ के रख दिता 10-30 लाशां उन्हां दे आले दुआले पईआं ने। ते जदों ये गल जलालुद्दीन ने देखी उन्हें मन विच विचार बनाई भी जे मैं इवें भेजदा रहा मैं की मुंह दिखा के आवांगा भी तुहाडे दो बंदियां ने दो सिखां ने मेरे 100 बंदे मारते मैं की मुंह दिखावांगा। उन्हें इक्को बारी जिहड़े बाकी 70 बचे सन उन्हां नूं भेज दिता भी हल्ला करो। हुण उन्हां 70 ने जदों हल्ला कीता किधरे गुरु के सिखां दे नेजे वजे किधरे तीर वजे

अत्यंत पाप दी वृत्ति लेके उन्हें फिर एक उपराला कीता। उन्हें उस वेले अपने फौजियां दे द्वारा कुछ एक तरखान बुलवाए, 3000 तरखान बुलवाए इलाके विचों। अज वर्गिया मशीना नहीं सन। 3000 तरखान बुलवा के उन्हें उपराला कीता भी ये जंगल नू काट दियो, क्योंकि इहदे विच मैं जा नहीं सकदा, मेरी फौजां नहीं जा नहीं सकदियां, ते अंदर वास्ते सिखां नू मैं पकड़ नहीं सकदा। उन्हें कोशिश की, कहन लगे जंगल नू कट दियो, लेकिन उन 3000 बंदे हाथी जंगल कटन वह किन्ने कु दिन कट सकते सन बेचारे। जो थोड़ा बहुत जंगल कटिया जाना उहदे कोल सबर ना होया, उन्हें जंगल कटना बंद कर दिता। कहन लगे नहीं, जंगल कटना बंद कर दियो, बंद करवा दिता। हुण अपने दिमाग विच इस नक्शे नू बनायो, ये जेड़ा शंभ है, ये जेड़ा जंगल है, इहदे चारे पासे दी अवस्था की है। एक पासे पहाड़ी है छोटी जी, उस पहाड़ी दे उत्ते पहाड़ी फौजा ने कब्जा किया होया, उन्हां दी अंदर सी उह, उन्होंने अपने वालों पत्थर वटे गोलियां ये सारा कुछ उन्हां दे कोल है। एक पासा जंगल दा ए है, दूजे पासे जंगल दे रावी वगदी है, ते उदे चो भी हड़ आया है। तीजा पासा उस पासे एक खुद लखपत राय अपनियां तोपां गोलियां फौजां लेके खड़ोता होया। तीन पासे मेरा ख्याल साडे दिमाग च आ जाने चाहिए ने। चौथा पक्ष, चौथे वाले पासे इस पापी ने जंगल नू अग ला दित्ती। हुण जदों जंगल नू अग लगी, उदों सेक लग्या। और मैं इतनी भी अर्ज करा, ए मई महीने शुरुआत मार्च तो होया है। सिक्खी विच 3 घल्लू घरे ने, ए छोटे घल्लू घरे दे नां नाल याद कीता जांदा है। सिक्खी विच 3 घल्लू घरे ने, एक छोटा घल्लू घर आ, ए मई दे महीने 1 मई नू मनाया जांदा है। शुरुआत मार्च तो हो गई सी, क्योंकि लंबी लड़ाई चली है। ए मार्च दे मई दे महीने 1746 दा वाका है। अज कोई बहुते सन तुहानू याद रखने की लोड़ नहीं, इको ही चलना है। 1746 दा यह भाणा वरते है। और याद रखो, मई दे महीने अप्रैल दे महीने जंगल नू अग लगी होवे, उदा ही कहर वरतदा है। ते एहो जी गर्मी दे विच जदों अग लगी हुई है जंगल नू, एक पासे रावी चढ़ी हुई है, एक पासे जे ओ पहाड़ नू चढ़न दी कोशिश करदे ने, उत्थों इट्टां बट्टे ते गोलियां जिहड़ियां ओ शरियां मौत दा स्वागत करदियां, सिखां दा स्वागत करदियां, ना बेचारे उधर जा सकदे ने, ना रावी विचों लंघ सकदे ने। ते आखिरकार इस तरह जदों चारे पासे उन्होंने मल ले ते अग ला दित्ती, फिर गुरु के सिखां ने फैसला कीता। एक गल मैं होर पहलू ही कह दिया, ये सारे बोल जेडे रास तुहाडे नाल सांझे कर रहे रतन सिंह पंगू दे ने, करम सिंह स्टोरियां ने गल लिखी। पहलो मैं वह गल कर दिया, वह कहिंदा रतन सिंह पंगू, मेरा जी करदा तेरे हाथ चुम लवां जेडे हाथ नाल तू पंथ प्रकाश लिखिया। इतनिया मुसीबतां दा जिक्र कीता तू, जी करदा मैं तेरा हाथ चुमना जेड़े हाथ नाल तू पंथ प्रकाश लिखे। उन्हां गल करदे ने, मैं गल उसे वलावां। रतन सिंह पंगू ने एक बचन लिखिया बड़ा प्यारा, कहन लगे अद्धी मौत मुसाफरी। जदों कदे मुसाफरी विच जाना पै जाए बंदे नूं, अद्धी मौत हुंदी, क्योंकि घर दे सारे सुख ते अगने पैंदे ने। तुसी अपनी मर्जी नहीं कर सकते, जो मिले हालातां नाल समझौता करना पैंदा है। अद्धी मौत मुसाफरी पूरी मौत सो भुख, कहन लगे एक मुसाफरी होवे उत्तों भुखे रहना पै जाए मुसाफरी दे विच। अद्धी मौत मुसाफरी पूरी मौत सो भुख, ऊहां आण दो मिले जै भयो खालसे दुख। कहन लगे खालसे कोल दोवें आके उत्थे मिल गईयां, एक भुख भी कहरां दी है, खाण लई कुछ नहीं। घोड़ियां नूं डराउण दी कोशिश करदे ने बेचारे, कमजोर होए घोड़े, कई कई दिनां दे भुखे नहीं चल पाउंदे। रतन सिंह पंगू ने लिखिया, कहन लगे जे पहाड़ी ते चढ़ाउण लगदे ने ओ बेचारे, इन्नी ताकत नहीं है, डिग पैंदे ने खड्डां विच, ते सिख फिर घोड़ियां दा भी

कोई दुविधा नहीं सी खड़ी हुई, किसी किस्म की भी कोई भावना नहीं सी। जे किसी नूं कोई नवाबी मिलती, जे किसी नूं कोई अहुदा मिलता, वह ठुकरा देंदे सन। पिछे जिक्र कर चुका दास तुहाडे नाल, जसवंत सिंह आलूवालिए ने जदों सरहद के उत्ते हमला करके उन्हें फतेह किया, सारे संघां ने उन्हें हुक्म होया भी सरहद दे विच हुण कोई है नहीं। सरहद उदों बहुत उगा शहर सी, सरहद विच कोई है नहीं ते तुसीं तख्त ते बैठो। जसवंत सिंह आलूवालिए ने उदों मना कर दिता सी, कहण लगे नहीं, एक खालसे दा राज एक व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। याद आप जी नूं याद रखण दी लोड़ है बहुत ज्यादा, सरहद दे विच ही सिखां ने पहला सिक्का उजड़ा शुरू किया सी। देगो तेगो फतेह, नुसरत वेद रंग, याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह, यह पहला सिक्का। और यह भी चेते रखने वाली बात है, उदो सिखां नूं भड़काउण वास्ते, सिखां दे प्रति भड़काउण वास्ते जिहड़े लोग अहमद शाह अबदाली दे चमचे सन, उन्होंने गलत सिक्का घड़ के अहमद शाह अबदाली नूं भी दिखाया सी भी तेरे राज विच सिक्के ओह घड़दे ने अपने, पर ओह सिक्का कोई नकली सी, क्योंकि उहदे ते अखीर विच जस्सा कलाल शब्द आउंदा है। जस्सा सिंह ऐसा नहीं कर सकदा भी जस्सा सिंह ना लिखे ते कलाल अपनी कास्ट लिखे। आलूवालिया उहदे नगर दा नाम सी, उस करके शुरू हो गया। ओह सिक्का नकली है, उस वेले दो सिक्के जिहड़े होंद विच आए सन। मैं उसे गल वल चला, उदो सारे लोग एक मैं पल पिछोकड़ होर फोलना चाहना, थोड़ा जा गल समझ लग जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की, जिहड़ी पंजां दा सिस्टम मनाया, ते उदो जदों गुरमते हुंदे सन, सरबत खालसा हुंदे सन, उदो गुरु के सिख सारे रल मिल के अरदास करनी, अरदास करके उन्हां विचों जथेदार जत्था सिंह ने जां नवाब कपूर सिंह ने खड़े हो जाना, एक बंदे दा नाम चुनना पैना, ते उह बंदे नूं खड़ा कर लेना। अगर उन्हूं कोई इतराज नहीं, अगर संगत नूं कोई इतराज नहीं, तो मत्था टेक के उन्हूं शब्द कहा जांदा सी प्यारा, यह प्यारा बन गया। फिर उस एक बंदे ने अगे दूजा बंदा चुनना है, फिर उन्हें खड़ा होना है, फतेह बुलानी है। जे संगत नूं नहीं इतराज तो दूजा प्यारा बन गया, फिर उन्हां दोनों ने सलाह करके तीजा चुनना, फिर तिन्हां ने सलाह करके चौथा चुनना, चारा ने सलाह करके पंजवां चुनना, पंजा ने फिर गुरु अगे अरदास करनी, अरदास करके अपनी सुधाई करके फिर पंजा ने फैसले लेने। उन्हूं गुरमत्ता कहिंदे सन, उन्हूं सरबत खालसा कहिंदे सन, उन्हां पंजा दी अगवाई च सरबत खालसा हुंदा सी। बड़ा अच्छा सिस्टम सी। वक्त आया उदों जिहड़े गुरु के सिख सन, अकाल तख्त साहिब जाण तों पहलां, गुरमते करन तों पहलां, रतन सिंह पंगू ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने, बैठ हरिमंदर सुने सो ज्ञाना। सब तो पहले हरिमंदर साहिब जांदे ने, हरिमंदर साहिब बैठ के मत्था टेक के कड़ा प्रसादी दे करवा के शरधा दे मुताबक, ते उस वेले फिर बैठ के पहले कीर्तन सुनदे ने। हरिमंदर साहिब च भी कथा हुंदी रही है, याद रखो जी। सब तो पहला कथा बाकी चने उठदा सी, रोह विचार गल लम्मी हो जाएगी, उलझ जाएगी अपनी गल, वह ज्ञानियां दी बकायदा लड़ी है एक लम्मी किसी फिर से कि पुजारियां ने बंद करवाई सी भी इत्थे हरिमंदर साहिब दे विचों सच दा उपदेश नहीं मिलना चाहिदा। अपनी गल बली वापस परता, उदों बैठ के उन्होंने बैठ हरिमंदर सुने सो ज्ञाना, बड़े अदब सत्कार नाल सारे बिना किसी वितकरिया तो भुल भुला के बैठ के रब की बाणी का कीर्तन सुनते, निर्मल मन करते हैं। गुर चरणन पर लावे ध्याना, गुरु चरणा के उत्ते ध्यान लाउंदे, किसी का कोई वैर विरोध नहीं, कोई केड़ी मिसल दा केड़े जत्थे दा इस गल का ख्याल नहीं सी कीता जांदा, सारे इकट्ठे बैठ के गुरु के चरणा विच ध्यान जोड़दे सन। उस तो बाद विच अकाल बूंगे चढ़ तख्ते बहे हैं, उस तो बाद अकाल तख्त साहिब ते जांदे ने, उहदा पहला नां अकाल बूंगा है, पहला अकाल तख्त साहिब ते जांदे ने, फिर अदब सत्कार नाल उत्थे भी महाराज नूं मत्था टेकदे ने।

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल। उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां, पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनू पकड़ लिया।
0: जिजनी को एक तुरंग चढ़ायो, एक रीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नू बाहर लिआंदा, पठान नू भी खड़ा कर लिया, पिंड वालियां नू इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, भई असीं इहनू एवें नहीं लैके जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनू पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जाता कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता जी।

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते, ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्होंने कई बारी अपने नाल जंग कीता है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दोबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो हे पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्हां ने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हां दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरते वरतारा जग जथा
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर ती कह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह की हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल ओ सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ